या कर जा असी ती पकिया संपकिया पापकी बोली जमानो बंटा लुन्न देखे बेबदा चेन्न अलाम सिवी जंकें दवाला निंदर कंकमिन्ना